नमस्कार, ये आकाशवाणी एडलेड है और आप सुन रहे हैं 5 PVI 103.1 FM का भारतीय प्रसारण अमित दुआ के साथ। दोस्तों, आज 3 जून बुधवार का दिन है और शाम के 7:30 बजे हैं और एडलेड में यहाँ बाहर का टेम्परेचर इस वक्त 13 डिग्री है। पिछले लास्ट कुछ दिनों से काफ़ी बारिश हो रही है और मज़ा भी आ रहा है। अच्छा है, थोड़ा ठंड जो है, थोड़ी अगर थोड़ा उसमें मॉइस्चर आ जाए तो थोड़ा और अच्छी हो जाती है, हेल्दी हो जाती है। और दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में मेरे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं आपके लिए और बहुत ही बढ़िया गाने मैं आपके लिए चुनकर लाया हूँ। लेकिन सबसे पहली शुरुआत करूँगा मैं इस गाने के साथ और इस गाने की खासियत मैं आपको इस गाने के बाद बताऊँगा। चलिए अब सुनते हैं ये सॉन्ग।

दोस्तों आप सुन रहे हैं 5 EBI 103.1 FM का भारतीय प्रसारण, अमित दुआ के साथ। दोस्तों मैं बात कर रहा था इस यूनिक गाने के बारे में और इसके एक यूनिक रिकॉर्ड के बारे में, इस गाने के यूनिक रिकॉर्ड के बारे में। अब आपको समझ तो आ ही गया होगा कि ये किसने गाया। जी हाँ, ये किशोर कुमार का गाया हुआ गाना है और इसकी खास यूनिक बात यह है कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी किशोर कुमार थे, वो फिल्म डायरेक्टर भी थे और इस फिल्म में लीड रोल भी उन्होंने निभाया है। सॉन्ग राइटर भी वही थे और सॉन्ग के कंपोज़र भी वही थे और सिंगर तो ऑब्वियसली थे ही किशोर कुमार। और ये सॉन्ग जो है, ये फिल्म भी उन्हीं पर ही हुआ है, किशोर कुमार के ऊपर। और जो इस गाने में जो ये छोटा बच्चा जिसके साथ किशोर कुमार है, ये और कोई नहीं, उनका अपना बेटा अमित कुमार है। तो ये काफ़ी इस गाने की एक यूनिक बात है। फिल्म का नाम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, जब आप इसको गूगल करेंगे तो फिल्म का नाम आप मुझे ढूंढकर हमारे फेसबुक पेज पे बता सकते हैं। तो ये तो थी दोस्तों इस गाने की बात। अब दोस्तों बात करते हैं बच्चों के नाश्ते के बारे में। अब जैसे पेरेंट्स कभी कभी जल्दबाजी में जो है उनको नाश्ते में चाय और बिस्किट दे देते हैं, और आम तौर पर वैसे कई घरों में सुबह की शुरुआत चाय और बिस्किट या हल्के स्नैक्स से होती है, और जब बड़े ऐसा करते हैं तो बच्चे भी यही आदत अपना लेते हैं। तो बात यह है कि चाय और बिस्कुट से जो है शरीर को ज़रूरी पोषण नहीं मिलता है। लंबे समय तक ऐसा नाश्ता करने से बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है और उनकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को हेल्दी नाश्ते के चॉइस दी जाए, जैसे कि जो क्विक वाला नाश्ता है, जैसे कि वेजिटेबल पोहा हो गया, पनीर स्टफिंग वाला चीला हो सकता है। और बात यह है कि चाय बिस्किट अनहेल्दी क्यों है, तो जैसे सुबह का नाश्ता बच्चे के पूरे दिन की एनर्जी और दिमाग के काम, जैसे उसके कॉग्निटिव फंक्शन और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वहीं चाय बिस्किट में पोषण ना के बराबर होता है। बिस्किट ज़्यादातर मैदा, चीनी और अनहेल्दी फैट से बने होते हैं। इनमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल जैसे ज़रूरी पोषक तत्व लगभग नहीं के बराबर होते हैं। वहीं चाय में भी कोई खास पोषण नहीं होता। ऐसे में ये दोनों चाय और बिस्किट मिलकर सिर्फ खाली कैलोरीज देते हैं, जो पेट तो भरते हैं लेकिन जो शरीर को ज़रूरी ताकत और पोषण नहीं देते। तो इस वजह से ये कॉम्बिनेशन जो है दोस्तों अच्छा नहीं है और बच्चों के शारीरिक और मानसिक सेहत पर इसका असर होता है, जैसे उनमें एनीमिया का खतरा बढ़ता है। चाय में टैनिन नाम का तत्व होता है जो शरीर में आयरन को सही तरीके से अवशोषित होने से, एब्जॉर्ब होने से रोकता है। तो अगर बच्चे रोज़ सुबह चाय पीते हैं तो उनके शरीर में आयरन की कमी हो सकती है और आगे चल के एनीमिया, जिसमें कि खून की कमी का खतरा बढ़ सकता है। तो इससे बच्चे की ग्रोथ और इम्यूनिटी दोनों पर बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही दूसरी बात, बिस्किट में चीनी ज़्यादा होती है जिससे ब्लड शुगर तेज़ी से बढ़ता है और फिर अचानक ड्रॉप होता है। तो इस उतार चढ़ाव की वजह से बच्चे चिड़चिड़े हो सकते हैं, उनका ध्यान कम लगने की शिकायत हो सकती है और बार बार कुछ अनहेल्दी खाने की इच्छा होने लगती है। और तीसरी बात है कि इसे नींद में असर पड़ता है। अब जैसे कैफीन वाली चाय बच्चों के लिए सही नहीं होती, ये उनकी नींद खराब कर सकती है, बेचैनी को बढ़ा सकती है। साथ ही इससे बच्चे का ध्यान लगाने की क्षमता और व्यवहार भी प्रभावित हो सकता है। अब जैसे मैंने बताया अनहेल्दी खाने की इच्छा बढ़ती है, तो ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा देर तक ऊर्जा नहीं देते चाय और बिस्किट वाले, तो बच्चे थोड़ी देर में फिर भूखे महसूस करते हैं जिससे वे बाद में ज़्यादा खाना खा सकते हैं या फिर अनहेल्दी स्नैक्स की मांग करने लग सकते हैं। और हर दिन चाय और बिस्किट खाने से बच्चों को पूरा पोषण नहीं मिलता, इससे उनके विकास पर भी असर पड़ सकता है। तो ऐसी आदत के कारण बच्चे जल्दी थकते हैं, उनकी जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो सकती है और शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, वो भी खासकर आयरन और कैल्शियम की। अब जैसे अगर पूरा न्यूट्रिशन वाला खाना ना मिले तो उससे बच्चों के दिमाग पर भी असर पड़ता है। ऐसे में बच्चों को कंस्ट्रक्शन में जैसे दिक्कत होती है और याददाश्त कमज़ोर हो सकती है,
कंसंट्रेशन में दिक्कत होती है और याददाश्त कमज़ोर हो सकती है और शैक्षणिक प्रदर्शन में भी गिरावट देखने को मिलती है। अब जैसे मैं आपको कुछ एक आसान जो है अल्टरनेटिव्स बता रहा था नाश्ते के, जैसे मूंगफली के साथ वेजिटेबल पोहा, दही के साथ होल व्हीट वेजिटेबल पराठा, दूध और फलों के साथ ओट्स हो गए दलिया, और जैसे पनीर स्टफिंग वाला बेसन का चिल्ला, या होल ग्रेन टोस्ट के साथ बॉयल्ड एग्स हो सकते हैं, मेवों के और बीज के साथ फ्रूट स्मूदी हो सकती है, सब्जियों के साथ उपमा हो सकता है, सादा या मीठा दलिया हो सकता है, तो और दूध के साथ पीनट बटर या पनीर सैंडविच। तो कितने सारे अल्टरनेटिव्स हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको काफ़ी अल्टरनेटिव मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हम अपने इसमें चेंज लाएंगे और बच्चों को हेल्दी नाश्ता देंगे। चलिए अब सुनते हैं गाना।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: Asian fusion and authentic Indian. With a relaxing seating arrangement for dine-in and takeaway options at our two locations, Mother India Kitchen, Port Road, Alberton 08711-26878 and Cinnamon Curry, Findon Road, Woodville South 08708032201. You can contact for your private or official functions. We are proudly announced that Mother India Kitchen and Cinnamon Curry are the sponsors of this program.
1: दोस्तों बात करते हैं IPL के बारे में, क्योंकि IPL जो है दोस्तों इस वक्त वर्ल्ड की काफ़ी पॉपुलर लीग में आ चुकी है, और अगर मैं डॉलर टर्म्स में भी बात करूं तो वो टॉप 5 लीग्स में आती है जो स्पोर्ट्स के जो है. लेकिन वो मेरा मकसद नहीं है आज उसकी फाइनेंशियल में जाना. बात यह है कि इस बार जो है RCB जो कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जो ये जीता है, ये एक बहुत ही ख़ास जीत थी उनकी. जैसे कि 2026 की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु IPL की चैम्पियन बन चुकी है, और विराट कोहली ने फाइनल में जीत के हीरो रहे. इस IPL सीज़न में कई यादगार चीज़ें रही, उसी के बारे में बात करेंगे. और दोस्तों IPL के इस सीज़न की आखिरी तस्वीर को भुलाना आसान नहीं है, जिसमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 90,000 से ज़्यादा दर्शक और बीच मैदान में जोश भरते विराट कोहली. जब उन्होंने 6 मारकर RCB को जिताया, तब ऐसा लगा मानो एक अधूरी कहानी अपने मुकाम तक पहुंच गई है. और दोस्तों केवल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ही नहीं, ये टूर्नामेंट भी अपने पहचान से जुड़े सवाल पूछ रहा था. 2026 के सीज़न में उसका जवाब कई रूपों में दिया. रिकॉर्ड बुक को नए सिरे से लिखता 15 साल का एक लड़का, मध्य प्रदेश का शांत खिलाड़ी जिसने अपनी टीम को लगातार 2 खिताब दिलाए, और टीम इंडिया में सिलेक्शन के लिए दावेदारी पेश करते 2 बल्लेबाज और T20 स्पेशलिस्ट की एक पूरी पीढ़ी जिसने खुद को इस मंच के लिए तैयार किया है. और बात करूं विराट कोहली की, तो इसे समझने के लिए याद कीजिए कि वह क्या कर चुके हैं. 2016 में उन्होंने 973 रन बनाए थे, 973 रन IPL के किसी एक सीज़न में सबसे ज़्यादा. आज भी वह रिकॉर्ड कायम है. तब उन्होंने अपनी टीम को अकेले अपने दम तक फाइनल तक पहुंचाया था, और एक दशक तक वह सीज़न उनकी पहचान बना रहा. पर इस बार उन्होंने उससे भी पीछे छोड़ दिया, और इस साल विराट कोहली ने बेहतर स्ट्राइक रेट से रन बनाए और फाइनल में सबसे तेज़ IPL 50 लगाई. और अगर मैं बात करूं समय के साथ, तो CSK और मुंबई के बाद RCB केवल तीसरी टीम है जिसने लगातार 2 टाइटल जीते हैं. कोहली के पास अब 2 IPL खिताब हैं. उन्होंने ये सब हासिल किया उस उम्र में जब उनके कई जो उनके समकालीन खिलाड़ी ढलान पर हैं या रिटायर हो चुके हैं. और ये सबक है कि अगर आप समय के साथ जो है बदलते रहते हैं, तो आप कभी भी इररेलेवेंट नहीं होते. और बात करूं अगर विराट कोहली पुराने दौर की सबसे चमकदार पहचान है, तो वैभव सूर्यवंशी जो है वो एक नई पीढ़ी का चेहरा है. उनके जो आंकड़े हैं वो असाधारण हैं, जैसे कि 242 के स्ट्राइक रेट से 776 रन. T20 इतिहास में वह पहले बैटर हैं जिन्होंने 200 से अधिक के स्ट्राइक रेट पर 600 से अधिक रन बनाए हैं. और छक्के मारने में तो उन्होंने क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ दिया है. वह ऐसे पहले बैटर बने हैं जिन्होंने एक ही सीज़न में केवल पावर प्ले में 500 रनों का आंकड़ा पार किया, और कुल 521 रन उन्होंने बनाए. और इन आंकड़ों से स्टैटिस्टिक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वैभव की बैटिंग देखने के लिए दर्शक अब अलार्म सेट करते हैं. उनकी वजह से राजस्थान रॉयल्स का पावर प्ले दूसरी टीमों से ज़्यादा आकर्षक रहा, और वे एक ऐसा टैलेंट है जिसको देखकर लगता है कि यह टूर्नामेंट क्यों ज़रूरी है. आज वह वैसी ही लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं जैसे विराट कोहली ने 2008 के बाद की थी. और अगर मैं कैप्टनशिप की बात करूं तो 2026 में ऐसे दो बल्लेबाजों की कहानी है जिनकी अनदेखी करना नामुमकिन है। आरसीबी में रजत पाटीदार की एंट्री साल 2022 में एक चोटिल खिलाड़ी की जगह हुई थी, एक इंजर्ड प्लेयर की जगह, और अब वह टीम को बतौर कप्तान दो टाइटल दिला चुके हैं। इस सीज़न में उन्होंने 196 के स्ट्राइक रेट से 486 रन भी बनाए। इससे अधिक खास उनका अंदाज है ऊपर से शांत और भीतर से आक्रामक, तो उनकी राजनीतिक समझ की भी सबने तारीफ की है। और दूसरी ओर अगर शुभमन गिल के उनके आलोचकों को जवाब दिया जो उनकी T20 क्षमता पर सवाल उठा रहे थे, तो उन्होंने भी अच्छी स्ट्राइक रेट से 722 रन बनाए हैं और शुरुआती हार से उबरती हुई टीम को फाइनल तक लीड किया। तो गिल और पाटीदार के साथ अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों ने भी अपने प्रशंसक तैयार कर लिए हैं। तो ये पहले से एक बड़ा बदलाव है जब धोनी, कोहली, रोहित और बुमराह जैसों का ही राज हुआ करता था। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 को शिखर तक पहुंचने के लिए चुना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं टाइटल ये IPL ऐसे ही चलेगा और लोगों को आने वाले टाइम में एंटरटेन करेगा। चलिए अब सुनते हैं ये गाना।

तेज रफ्तार। दुनिया में अक्सर ये सवाल उठता है कि बच्चों को अब कौन सा विषय पढ़ना चाहिए ताकि उनका फ्यूचर जो है वो सुरक्षित रहे, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी एआई चिप कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेसन हुआंग की राय इससे बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि एआई के दौर में क्या पढ़ना है से ज़्यादा महत्वपूर्ण है होगा कि एआई का इस्तेमाल करके कितना बेहतर सीखना है। और सिंगापुर के एक चैनल को दिए इंटरव्यू में हुआंग ने कहा कि माता पिता को इस बात को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए कि उनके बच्चे कौन सा सब्जेक्ट चुन रहे हैं। उनके मुताबिक जो चीज़ें पहले महत्वपूर्ण थी, जैसे कि रचनात्मकता, कहानी कहने की क्षमता, समझदारी और इंसानी जुड़ाव, वही भविष्य में भी सबसे ज़्यादा मायने रखेंगी। हुआंग ने अपनी जापानी विचार वाबी साबी का भी जिक्र किया, जिसमें अपूर्णता की सुंदरता को महत्व दिया जाता है। उनका संकेत था कि एआई की परफेक्ट दुनिया में इंसानों की भावनाएं, उनके जो इमोशंस हैं, उनकी जो मिस्टेक्स हैं और उनकी जो व्यक्तिगत शैली, जो उनकी पर्सनालिटीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा खास बन सकती हैं। जेसन हुआंग ने नौकरियों को टास्क की टोकरी बताया। उनके अनुसार एआई कई दोहराए जाने वाले काम ऑटोमेट कर देगा, लेकिन इससे इंसानों को ज़्यादा कठिन, रचनात्मक और रणनीतिक काम करने का समय मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि एआई जो है वो इंसानों को आलसी नहीं बनाएगा। जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्टफोन आने के बाद लोग कम व्यस्त नहीं हुए बल्कि और ज़्यादा काम करने लग गए, तो वैसे ही एआई भी इंसानी महत्वाकांक्षा को बढ़ाएगा। तो इससे क्या होगा कि आउटपुट और इंक्रीज होगा। तो एआई की दौर में बच्चों के लिए रचनात्मक सोच, एआई टूल्स का स्मार्ट इस्तेमाल, जिज्ञासा और लगातार सीखने की मानसिकता बनाए रखना जरूरी है। हुआंग ने खास तौर पर पत्रकारिता, जर्नलिज्म और आर्ट, डिज़ाइन और स्टोरी टेलिंग जैसे क्षेत्रों का जिक्र किया है। उनका कहना है कि एआई जानकारी दे सकता है, लेकिन इंसानों जैसी एक संवेदनशील बातचीत और सही समय पर सही सवाल पूछना और लोगों को जोड़ने वाली कहानी गढ़ना अभी भी एक ह्यूमन के ही पास है, ऐसी जो क्षमता है। उनका कहना है कि एक अच्छा इंटरव्यूअर सिर्फ तैयारी नहीं करता बल्कि सामने वालों को ध्यान से सुनता है और उसी पल बेहतर प्रतिक्रिया देता है। तो इंसानों की यही धारणा, गढ़ने का जो गुण, भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि एआई को जो लोग दोस्तों है वो एक पॉजिटिव तरीके से लेंगे, ना कि ले बैक होके कि एआई सारा कुछ कर सकता है। तो चलिए अब सुनते हैं एक गाना।

0: for setting up of tax-effective business structures, tax advice, business activity statements, and income tax returns, please contact LSM & Co. Chartered Accountants. Individual tax return fees start from only $77. Conditions apply. You can find them at 212 Prospect Road Prospect or call them on 8342 3923. LSM & Co., a sponsor of this program.
1: अब दोस्तों बात करते हैं कुछ गर्मी के बारे में। मैं जानता हूँ यहाँ एडलेड में इस वक्त ठंड आ रही है, लेकिन इस गर्मी की बात करना ज़रूरी है क्योंकि इसका हमारे पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर हम ठंड को अप्रिशिएट कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमें ये पता हो कि गर्मी में टेम्परेचर बढ़ने से ज़्यादातर लोग थकान, चिड़चिड़ापन या कम नींद जैसी समस्याएँ महसूस करते हैं, तो इसके बाद ये आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको ठंड बहुत बेहतर लगने लगेगी। फिर कोई कंप्लेंट नहीं करेगा कि बहुत ठंड हो गई है। तो इससे क्या होता है, गर्मी से कई बार काम में फोकस कम हो जाता है, बात बात पर गुस्सा आता है या बिना वजह बेचैनी बढ़ती है। तो हीट वेव या लगातार हाई टेम्परेचर से स्ट्रेस लेवल, स्लीप प्रॉब्लम्स और मूड स्विंग्स से जुड़े केस बढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक गर्मियों में मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट के केस 8% तक बढ़ जाते हैं। डिहाइड्रेशन, खराब स्लीप पैटर्न और डेली रूटीन में बदलाव मिलकर मेंटल बैलेंस को प्रभावित करते हैं। तो अब बात यह है कि सवाल यह कि गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ने पर हमारे मूड और ब्रेन फंक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब जैसे गर्मियों में ज़्यादा टेम्परेचर होने पर शरीर को ठंडा रखने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, जिससे थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। डिहाइड्रेशन होता है जिससे फोकस और याददाश्त पर बुरा असर पड़ता है। ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे फील गुड हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, इससे मूड स्विंग, बेचैनी और गुस्सा बढ़ने की संभावना रहती है। स्लीप क्वालिटी खराब होती है जो ब्रेन फंक्शन को प्रभावित करती है और लंबे समय तक हीट एक्सपोजर से निर्णय लेने की क्षमता और फोकस पर भी कमजोर हो जाता है। अब सवाल यह कि गर्मी पड़ने पर किस तरह की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं। गर्मी का जो असर है दोस्तों वो ब्रेन और इमोशंस पर भी पड़ता है, तो इससे डिहाइड्रेशन, नींद की कमी और हार्मोनल बदलाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और हीट का जो असर है वो दिमाग पर, जैसे कि हमने बात करी कि गुस्सा और चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस लेवल बढ़ना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बेचैनी और घबराहट, मूड स्विंग्स और थकान और सुस्ती, जैसे ब्रेन फॉग, नींद ना आना और गंभीर मामलों में पैनिक अटैक तक जा सकते हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि ज़्यादा गर्मी से शरीर का थर्मो रेगुलेशन सिस्टम लगातार एक्टिव रहता है, जिससे मानसिक थकान बढ़ती है और रात में भी टेम्परेचर ज़्यादा रहने से स्लीप क्वालिटी ख़राब करती है, जो कि मूड को प्रभावित करती है। अब हाई टेम्परेचर के कारण डिहाइड्रेशन तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन इसका मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है, जैसे शरीर में फ्लूइड कम होने से फोकस और अलर्टनेस में कमी महसूस होती है। इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के कारण लो एनर्जी और मानसिक सुस्ती बढ़ती है और लंबे समय तक डिहाइड्रेशन से कन्फ्यूजन और चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाता है दोस्तों। तो अब बात यह है दोस्तों कि किन लोगों को समर सीज़न में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का रिस्क ज़्यादा होता है। अब जैसे कि अगर किसी को जैसे कि समस्या है, जैसे मैंने बताया, तो पसीने के साथ जैसे इलेक्ट्रोलाइट लॉस होने से ब्रेन फंक्शन और मूड कंट्रोल प्रभावित हो सकते हैं। तेज़ रोशनी और दिन लंबे होने से सेकेंड्रियन रिदम बिगड़ सकती है, जिससे स्लीप क्वालिटी ख़राब होती है। डिहाइड्रेशन के कारण कंसंट्रेशन और एंग्जाइटी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं और ज़्यादा थकान और लो एनर्जी डिप्रेशन के कारणों को ट्रिगर कर सकती है। तो गर्मियों में अब बात यह कि कौन सी हैबिट्स जो हैं हमारे दिमाग और मूड पर अतिरिक्त दबाव डालती है, जिनसे बचना चाहिए। तो गर्मियों में ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी से ब्रेन पर स्ट्रेस हार्मोन बढ़ सकता है। हाई कैफीन या शुगरी ड्रिंक लेने से मूड स्विंग्स और हार्ट रेट बढ़ सकता है, जैसे देर रात तक स्क्रीन यूज़ करने से मेलाटोनिन रिलीज कम हो जाता है और स्लीप साइकिल बिगड़ती है। एसी और बाहर की गर्मी के बीच बार बार एक्सपोजर से शरीर पर एडजस्टमेंट स्ट्रेस बढ़ता है और पानी कम पीने से भी मेंटल और फिजिकल परफॉर्मेंस घट सकती है। तो लाइफस्टाइल में दोस्तों ज़रूरी बदलाव से समझिए कि सुबह या शाम के ठंडे समय में हल्की एक्सरसाइज या वॉक करें, पूरे दिन में पानी जो है पर्याप्त पिएं और इलेक्ट्रोलाइट्स लें, दिन में छोटे छोटे ब्रेक लें और रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे डीप ब्रीदिंग अपनाएं, सनलाइट एक्सपोजर सीमित रखें और डेली रूटीन नियमित बनाए रखें। और डाइट की बात करूं तो दोस्तों शरीर को हाइड्रेटेड रखें, हल्की और न्यूट्रिएंट चीज़ों को रखें ताकि ब्रेन को लगातार ग्लूकोज और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। अब दोस्तों इतनी बातें बताई समर के बारे में, तो इसके बाद उम्मीद करता हूं कि आपको ठंड जो मौसम जो है जो यहां पर अभी अगले 4-5 महीने तक ठंड रहने वाली है, एटलीस्ट अक्टूबर तक तो वेदर अच्छा ही रहता है, ठंड वाला ही रहता है नवंबर तक भी कई बार, तो हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि मुझे वैसे पर्सनली मुझे कोल्ड वेदर ज़्यादा पसंद है रादर देन समर के। लेकिन चलिए अब आपकी, अब इस ठंड के मौसम में आपकी गर्मी बढ़ाने के लिए आप सुनते हैं ये गाना।

0: Thinking about a home loan, car loan, or refinancing in Adelaide, Mortgage Choice's Jags Lakhani is your local mortgage advisor in South Australia, ready to give you expert support that reflects your needs. Need a first home loan, investment, SMSF, personal or construction loan, or even car and business lending. Jags works with over 35 plus lenders, so you get more choice, more flexibility, more care, and more local support. Whether you're buying, refinancing, or need help finding the right loan, Jags is your trusted partner, guiding you with clarity, honesty, and personal attention every step of the way. Call or email Jags Lakhani today for a free consultation. That's 0451956659 or visit mortgagechoice.com.au/jags.lakhani. Unlock the right way forward.
1: A proud sponsor of 103.1 5 EBI FM.
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 5 EBI 103.1 का भारतीय प्रसारण अमित दुआ के साथ और अब बात करते हैं कुछ डेंटल के बारे में। दोस्तों लोगों के बीच बहुत एक आम सवाल होता है, क्या डेंटल क्लीनिंग करवाने से मेरे दांत ढीले तो नहीं पड़ जाएंगे? और अगर आप भी इस उलझन में हैं तो चलिए बात करते हैं इसी बारे में। डेंटल क्लीनिंग या स्केलिंग का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में एक डर बैठ जाता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि डेंटिस्ट से दांतों की सफाई कराने के बाद उनके दांत कमज़ोर होकर ढीले पड़ जाएंगे, तो इसी बारे में बात करते हैं। तो क्या सच में कमज़ोर होते हैं दांत? अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो ये बात पूरी तरह से गलत है। डॉक्टर्स का कहना है कि प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग से दांत कभी भी ढीले या कमज़ोर नहीं होते। इसके उलट जो आपके गम्स और दांतों की लंबी उम्र तक स्वस्थ बनाए रखने के लिए इस प्रक्रिया को बेहद ज़रूरी और फ़ायदेमंद माना गया है। तो बात यह है कि क्लीनिंग के दौरान क्या होता है, जब हम दांतों की नियमित सफाई में लापरवाही बरतते हैं तो दांतों और हमारे मसूड़े जो होते हैं गम्स, उनके बीच गंदगी की एक सख्त परत जमने लगती है जिसे टार्टर कहा जाता है। तो ये टार्टर इतनी आसानी से नहीं निकलता और हमारे जो मसूड़ों में सूजन पैदा करता है। इसकी वजह से मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है या मुंह में पनपने वाली बदबू भी मुख्य कारण बनता है। तो डेंटल क्लीनिंग के दौरान दांतों पर जमे इसी हानिकारक प्लाक और टार्टर को मशीन द्वारा हटाया जाता है, जिससे इन सब बीमारियों से बचाव होता है। और कई लोग कहते हैं कि सफाई के बाद दांत ढीले हो जाते हैं, तो यही वो पॉइंट है जहां से सारा भ्रम पैदा होता है। दरअसल दांतों का ढीलापन डेंटल क्लीनिंग की वजह से नहीं आता, बल्कि ये मसूड़ों की पहले से मौजूद बीमारी या हड्डियों की कमज़ोरी का नतीजा होता है। होता यह है कि टार्टर जो है दांतों के आसपास इतनी मोटी और सख्त परत बना लेता है कि वह कमज़ोर दांतों के लिए एक नकली सहारे का काम करना लगता है। जब डेंटिस्ट इस गंदगी को हटाते हैं तो वह अस्थाई सहारा भी छिन जाता है। तब जाकर मरीज को पहली बार अपने दांतों का असली ढीलापन महसूस होता है। और क्लीनिंग करवाने के बाद कुछ लोगों को एक दो दिन तक दांतों में हल्की झंझनाहट हो सकती है, इसके अलावा मसूड़ों में थोड़ी सी असहजता भी महसूस होने लगती है, लेकिन ये बिल्कुल एक सामान्य चीज़ है और धीरे धीरे आप ये अपने आप ठीक हो जाती है। तो नियमित रूप से दांतों की सफाई करवाते रहने से मसूड़ों की बीमारियों का खतरा हमेशा के लिए कम हो जाता है। तो वैसे तो डेंटिस्ट हर 6 से 12 महीने में डेंटल क्लीनिंग कराने की सलाह देते हैं। अगर आपके मुंह से अक्सर बदबू आती है या दांतों पर प्लाक ज़्यादा जमता है या मसूड़ों की कोई परेशानी है तो आपको ये सफाई ज़रूर करानी चाहिए। और इसलिए दांतों के ढीले होने की झूठी बातों में मत आएं और अपनी ओरल हेल्थ को जो है आप प्राथमिकता दें। चलिए अब सुनते हैं ये गाना।

दोस्तों बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो अपनी स्पीच दी थी, उन्होंने पूरी दुनिया में उसकी उसे पहचान बनाई थी। तो अपनी स्पीच की शुरुआत में ही उन्होंने अमेरिका की धरती पर जो पहली बात बोली, उस पर लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत में बोला, अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ ही जब उन्होंने अपना भाषण खत्म किया तो हॉल में बैठे लोगों का भारत के सोच के प्रति उनका नज़रिया बदल दिया था। उन्होंने शिकागो में दिए भाषण में धार्मिक कट्टरता के खिलाफ उनका संदेश था, साथ ही उन्होंने भारत की आध्यात्मिक ताकत को दुनिया तक पहुंचाया था। विवेकानंद मानते थे कि सच तक पहुंचने के लिए हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है। उनके विचार इतने प्रेरक हैं कि आज भी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले और जीवन में मोटिवेशन की खोज करने वाले उन्हें पढ़ना पसंद करते हैं। स्वामी विवेकानंद का सबसे लोकप्रिय कोट है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता भी उतनी बड़ी होगी, जिसे एक छोटी लेकिन असरदार सीख मिलती है कि हमें मेहनत से पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि उसके बाद की सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर आपने खुद को कमज़ोर समझा है तो उनकी नज़रों में ये सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि सफलता के रास्ते पर कमज़ोर नहीं चला करते, बल्कि ये मजबूत लोगों का काम होता है। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अगर उनके इस कोट को हमने अपना लिया तो जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। और स्वामी विवेकानंद का कोट है कि तुम्हें अंदर से बाहर की ओर विकसित होना होगा, कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता। उनका यह विचार एक शाश्वत सत्य की तरह है। उनके विचार की गहराइयों को समझने वाला उनसे बहुत ही आसानी से जुड़ सकता है। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि जिस दिन आपके काम में कोई समस्या ना आए तो समझ लो आप गलत रास्ते पे हो। तो विवेकानंद मानते थे कि सफलता की राह में मुश्किलें तो आती ही रहेंगी, और अगर वो आ रही हैं तो इसका मतलब आप सही रास्ते पर हैं। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि इंसान को डरना नहीं चाहिए, वरना उसकी शक्ति अपने आप खत्म हो जाती है। उनकी नज़रों में डरना पाप की तरह था, जो आत्मविश्वास की कमी से होता है। विवेकानंद कहते थे कि इंसान को एक वक्त पर एक ही काम करना चाहिए और उसमें पूरी आत्मा डालनी चाहिए। और रामकृष्ण मिशन के फाउंडर विवेकानंद का कोट है कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। तो उम्मीद करते हैं आप उनकी इन जो बातों पे अमल करेंगे। चलिए अब सुनते हैं एक गाना।

0: इतना नहीं
1: दोस्तों। अब इस अगले गाने के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब मुझे यानी अमित दुआ को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।